0: नागरिक एफएम 107.5 MHz वॉइस ऑफ द पीपल।
1: नागरिक टाइम चेक
2: अहिले बिहानको 10 बज्यो। यस टाइम चेकका प्रायोजक गोल्डरिङ चिया।

0: अब और सुनो,
1: रफ्तार बताएगा। कंधे पे गमछा कोई ना हमसा, सब छोटे भाई है कोई ना चमचा, पीछे जो पंजा तोड़े ये जबड़े, एवरी अदर डे ही करते हैं लफड़े, जिसको भी पकड़े तो रगड़े घसीटे, ये पीते ये बॉडी से तगड़े है, दिल से है मीठे, ये जब भी लड़े है ये जीते पड़े है, ये शेर के साथ में जीते खड़े है, ये रा भैया जी डॉनल है रा, ये भैया का सुन है रा, चुलबुल भी चुप क्योंकि बुलबुल भी जाने, ये भैया जी सॉन्ग है।

0: नागरिक एफएम 107.5 MHz वॉइस ऑफ द पीपल।
1: नागरिक टाइम चेक
2: अहिले दिउँसोको एक बज्यो।
3: यस टाइम चेकका प्रायोजक गोल्डरिङ चिया।

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक ट्रांसिट
2: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो
3: यो टाइम चेक का प्रायोजक गोल्डरिङ चिया।

0: भद्रपुरका पुराना स्वास्थ्य कर्मी बलदेव शाहद्वारा संचालित शाह क्लिनिक नवीन मेडिकल हलमा अब मेची अञ्चलकै पुराना र प्रसिद्ध वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर पीताम्बर ठाकुरको दैनिक सेवा साँझ 5 बजेदेखि। पेट, छाती, मुटु, नसा, सुगर, प्रेसर, जन्डिस, थाइराइड, मृगौला रोग विशेषज्ञ सेवाका साथै डाक्टर मनोज कुमार शाहको सेवा प्रत्येक बिहान 8:30 देखि 9:30 सम्म।
1: एपेन्डिक्स, हाइड्रोसिल, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला, स्तन सम्बन्धी, पित्त थैली, हर्निया, पथरी, गाँठा गुठी, चिरफार विशेषज्ञ, वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर विनेश झाको सेवा। प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरबाट छाला, चर्म, यौन रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ एमबीबीएस, एमडी, डर्मालोजी डाक्टर निस्तुक बराल प्रत्येक शनिबार दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म। नवजात शिशु तथा बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर आकाश घोष प्रत्येक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
0: अब हाम्रै भद्रपुरमा विशेषज्ञ सेवा लिन आउनुहोस्। शाह क्लिनिक नवीन मेडिकल हल, भद्रपुर 5 भद्रपुर बजार, फोन सम्पर्क 98-049-72-85, 023-525-353। 1 घण्टा अघि नै बिरामीको अग्रिम नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ।

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक सैनसेक
2: अहिले दिउँसोको 4 बज्यो
3: यस टाइम सिकका प्रायोजक गोल्डन चिया

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक ट्रैक
2: अहिले अपराह्न 5 बज्यो
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक गोल्ड रिंग चिया

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल।
1: नागरिक
2: अहिले साँझको 5:30 बजे हो।
3: नागरिक बुलेटिनको साथमा गोल्ड रिङ चिया।

0: नागरिक एफएम 107.5 MHz वॉइस ऑफ द पीपल।
1: नागरिक टाइम चेक
2: अहिले साँझको 7 बज्यो। यस टाइम चेक का प्रायोजक गोल्ड रिंग चिया।

0: तथा यौन रोगको लागि अत्याधुनिक ल्याब प्याथोलोजी सेवा,
1: फार्मेसी सेवा, अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न ब्युटी क्लिनिक सेवा।
0: याद राख्नुहोस्, यहाँ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा हरेक उपचार सर्वसुलभ शुल्कमा गरिन्छ। सम्पर्क डेल्फी स्किन केयर हस्पिटल, दमकदस, बेलडाङ्गी रोड। फोन नम्बर
1: 023-57-60-60,
0: मोबाइल नम्बर 98-526-76-76-0।
2: यहाँ प्रत्येक हप्ताको आइतबार एक दिन सेवा बन्द रहने जानकारी गराइन्छ।
1: डमकपछि डेल्फी स्किन क्लिनिक बिर्ता मोडमा पनि। खड्का कम्प्लेक्स बिर्ता मोड, सम्पर्क फोन नम्बर 023-591-0033, मोबाइल नम्बर 98-526-76-76-0।
3: अब हप्ताको सातै दिन डाक्टरको सेवा उपलब्ध छ।

0: म वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय कुमार गुप्ता, साक्षात अल्ट्रासाउन्ड क्लिनिक, अस्पताल रोड, भद्रपुर 8,
1: डाक्टर जय कुमार ठाकुरको क्लिनिक भित्र। सम्पर्क नम्बर 98446 86777।

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ट्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक टाइम से
2: अहिले बिहानको 5:30 बज्यो। नागरिक बुलेटिनको साथमा गोल्ड रिंग चिया।

0: हेर न भद्रपुर बजारमा कति राम्रो पसल खुलेछ नि।
1: कुन पसल? के को पसल भनेको?
0: सपना आर्टिफिसियल ज्वेलरी एन्ड गिफ्ट पसल।